प्राप्ति हो जावे ता फिर ओ गुरु इस लोक विच भी सहायता करदा है, परलोक विच भी सहायता करदा है। जेड़ा गुरु इस लोक विच सहायता नहीं कर सकदा परलोक विच क्या करेगा। उदी तां पहुंच उत्थों तक है, तिथे तू समरथ, जिथे कोई ना है।

के दूत नाए तेरे छड़ जाए, पूर्ण गुरु दी पहुंच लोक परलोक विच है। जिवें शहनशाह मीरी पीरी दे मालक छेवें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी अकाल तख्त साहिब दीवान विखे सशोभित हन, आओ बनाओ बिरती दियां अखां, करो उस पवित्र अस्थान दे दर्शन जिथों दी चरण धूड़ी ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवते बड़े बड़े पीर पैगंबर औलिया अवतार जिथों दी चरण धूड़ी नूं लोचदे हन, साहिब जी सशोभित हन, गुरु के कीर्तन हो रहे हन, रब्बी अमृत बरस रहा है, दूरों दूरों संगतां आके ऐं समाधि लाई बैठियां हन, कीर्तन विच झूम रहियां हन, जिवें पिपल दे पत्ते दी न्याई, जिवें पिपल दा पत्ता हवा रुमक रही होवे तां झूमदा है, तिवें गुरु के सिख अमृत बरस रहा है कीर्तन दा, ते फिर ए रस पुंज रहे हन, जुड़े हुए हन निरंकार दे चरणां। कीर्तन दी समाप्ति हुई, एक सिख आ पुजा जो हजूर दे चरणां विच आके बड़े सुंदर दो दुशाले लिया के अगे रखे, गरीब नवाज आप दी बड़ी कृपा हुई है, बड़ी मेहर हुई है, ए दुशाले मैं आप दी भेटा कर सकिया, कुछ समा पहले ही आप जी दे चरणां विच दर्शना लई पहुंचना सी, इदे नाल दे मैं दो दुशाले ले सन, पर जदों मैं आ रहा सा आप जी दे वल तां रस्ते विच पठाना ने घेर लिया, मेरे कोलों ए पट्टी दे पठान दो दुशाले खो के लै गए, नाले मैनू धमकियां भी देंदे रहे, नाले दुशाले भी लै गए, मैं आप जी दे वल आ रहा सा, पर फिर मन विच ख्याल आया कि गुरु दरबार विच खाली हथ किवें चला जावां, तां फिर मैं वापस कर गया, घर जाके फिर दुशाले तैयार करवाए हन गरीब नवाज, ते जंगलां विचों राती प्रभाती रस्ता कटदा होया आप दी कृपा दा सदका मैं इथे पहुंचया हां, ये आप दी कृपा है गरीब निवाज, जे कदे ओह भी तुहाडे चरणां विच पहुंच जांदे तां बड़ी कृपा होंदी। तां धन गुरु हरगोबिंद साहिब मेरी पीरी दे मालक भाई बिधी चंद नूं बुलाया, भाई बिधी चंद जी सच्चे पातशाह जा भाई, पट्टी दे पठाणा ने दो दुशाले खो ले हन सिख कोलों, ते तू जाके लै के आ, महाराज तुहाडी कृपा होवे, तुहाडी मेहर दा हथ जे सिर ते होवे ते केड़ी वड्डी गल है, आप दी पहुंच तां सुन के जम के दूत नाए तेरे छड जाए, आप की नहीं करवा सकदे, आप मेहर दा हथ रखो ते फिर केड़ी वड्डी गल है। भाई बिधी चंद सत बचन कह के पट्टी वल तुर पिया, रस्ते विच मुसलमानी लिबास दे कपड़े बनवाए जिवें मुसलमानियां पहनदियां हन, उस तरह दे कपड़े पा के अखां तक सिर्फ अखां खाली रहन दितियां, बाकी सारा बुरका चढ़ा लिया, ते किरपान अपने पास रख ली, ते गुरु दी किरपा नाल जा पहुंचिया पट्टी विच, ते सीधा ही फिर महलां विच चला गया, जां प्रवेश कीता अगे पटराणी अते होर राणियां बैठियां हन, ते जाके तलवार कढ ली, भाई जेड़े दो दुशाले नवे आए हन ओ किथे हन, छेती लियाओ इत्थे, छेती नाल भज के गए, दुशाले ले आंदे भाई बिधी चंद नूं दे दित्ते, भाई बिधी चंद अपना रस्ता पकड़िया, पर इतने तक उन्होंने रौला पा दिता, जो रौला पाया तो फिर चारे दरवाजे बंद हो गए, उच्चारण करो श्री,
पर गुरु मेरे संग सदा है नाले।

इस तरह मन करके गुरु दे चरणा विच जुड़ के अरदास कर रहा है भाई बिधी चंद ते पट्ठे विच वड़ गया। मन जुड़ गया गुरु हरगोबिंद साहब जी दे चरणा दा ध्यान धरिया होया ते अरदास कर रहा है राख पिता इधर धन गुरु हरगोबिंद साहब अकाल तख्त दी पवित्र धरती ते आप भाग ला रहे हैं जुड़े बैठे हैं ते अचानक संगता नु हुकम कीता जाओ सरोवर विचों जल भर के साडे उपर पाओ। गुरु का हुकम मन के सारिया संगता वाहो दाई दौड़िया पता नहीं गुरु ने की बहाना वरताया इतना जल पवाया अपने ऊपर के सारा जल जल हो गया। इधर अकाल पुरख वाहेगुरु दा की कौतक वरत्या भाई बिधी चंद जदों पट्ठे विच वड़िया ना उसे वेले बदली आई ते मोले तार मी वसन लग गया। जां मी वसिया पट्ठा ठंडा पै गया। धन गुरु हरगोबिंद साहब धन गुरु हरगोबिंद साहब आप दा वचन तीन काल सत है कि जेड़ा महापुरुष जेड़ा सतगुरु इथे नहीं रखिया कर सकदा उह दरगाह विच की करे। हुण बदली होण करके दिन भी छेती छिप गया हनेरा पैण लगा ते हनेरे दा फायदा उठा के पाई बिधी चंद छास ग्रास सिमरन करदा होया गुरु हरगोबिंद साहब जी दे चरणा विच आ पहुंचिया अमृतसर। मथा टेक के दोवें दुशाले अगे रखे हजूर दे गरीब नवाज।

कुछ निंदा चुगली करने वाले भी खड़े, बादशाह के दरबारी भी खड़े। कबीर साहब जा पहुंचे, बादशाह ने देखा और बादशाह नु कबीर

संगत रहो, ज्यों की भूसी खाओ, ज्यों दी तोड़ी। थोड़ा कम कटदा है कट जे, गरीबी कट ले, ज्यों दी तोड़ी खा के गुजारा कर ले, पर नाम जपण वाले दी संगत ना छड़। कबीर साधु की संगत रहो, ज्यों

कसमलदा हर खान नान कसमलदा दवन निदान दवा दवा मबरे गजारे निदा निदा गजे निदान दवा दवा मरे दवा मदवा रे मदा जाने दवा दवा मबरे गजारे दरगुदा निदा दरगुदा निदा दरगुदा

नानक तू लेना तू है गुर अमर तू विचारिया गुर डिठा तमन सदारिया रामदास सर

को आस जगत गुरु की पार्श पेट पर्श करो रामदास गुरु हर सत कियो समरथ गुर सिर हत्तरे ओ कसमल जाय हर घनन कसमल जा हर घनन के।

गुरु अमर गुरु श्री सत कल जुग राखी पत अग्नि देखत गत चरण कमल दास चरण कमल दास सब विद्मान्यो मन तभी पयो प्रसन्न गुरु जोग तख्त दियन गुरु रामदास नाये रामदास सरी नाये रामदास सरी दस सरी दस दस नाये रामदास सरी नाये रामदास सरी हम अब गुण

रघुवंश तिलक दशरथ कारी मन बाछे ताकी शरणं। रघुवंश तिलक दशरथ कारी मन बाछे ताकी शरणं। सतगुर सेव अलखगत जाकी।

मैं बंदा बेखरीद सच्चा मेरा मैं बंदा बेखरीद सच्चा मेरा जो पिंड सतिसा सब कुछ है तेरा माणा में माणे तू तने तेरा परवासा बिन साचे अंतिक है तो जानू काचा बिन साचे अंतिक है तो जानू काचा

कर कृपा प्रीतम प्रभु अपने नाम जपो हरन जल को प्रभु अपने का तान जन को प्रभु अपने का तान जो तू करे करावे स्वामी हा मसलत परवा चरण शरण हम अनाथ नाथ हरतन अपनी कृपा करे चरण कमल नानक आरा दे किस दिन आम के पत परमेश्वर गत नारायण तन गोपाल गुण साखी

मैं दूजी नहीं थार जिस पे हम जाएंगे ता तुम ते लेना तू मेरा देना जो तू दे सोई सुख सहना जो तू दे सोई सुख सहना हर आपे हुए कृपाल आप ही लाएंगे।

पुरुष शब्द शर्म को जी भरत नारायण पदार्थ वसा के परिणाम वाणी गुरबाणी लागे तिन हस्ते